0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: नुड़करो के तुहाडे शहर दे विच खुले होम फिक्स तो तुसी अपने घर दी रेनोवेशन लई हर तरह दी जरूरतां पूरियां कर सकदे हो। हार्डवुड, लैमिनेट, वख-वख तरह दी फ्लोरिंग, पोर्चलिन टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, फॉसेट्स, प्लंबिंग एक्सेसरी, डोर, विंडो, ड्राइवर्स, खिड़कियां, दरवाजे आदि रहना चाहुंदे हो तां होम फिक्स ते आओ। 2657 डंडा स्ट्रीट, वेस्ट मिसिसागा, 20 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड, ब्रैम्पटन, और कॉल 9057962555 9057625555। इफ यू नीड योर होम फिक्स, कॉल होम फिक्स। लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम, एनी टाइम होम रेनोवेशन। सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम, प्लम्बिंग, किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमा नु समय ते करवाओ लई चेते रखो। एनी टाइम होम रेनोवेशन। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 6472717135 6472711735। एनी टाइम होम रेनोवेशन।
2: रोज दे खाने तो हो गया बोर,
3: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
4: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुँचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट, 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू, ईटोबीको। फोन नंबर 4167498333 यानी 416-749-8333। जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना।
5: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट।
1: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 4165618882 416-561-8882।
6: टोल जगीरो दा ते टाबा जगीर दा इना दोना दे क्या कहने।
7: जगीर दा टाबा इना दे ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन दा है हर कोई दीवारा।
6: बटर चिकन, गोट करी, टिक्का मसाला, चना मसाला, दाल मखनी,
7: मिक्स वेज पकौड़ा, स्पेशल फिश, बिरयानी, बर्गर ते परांठा,
6: डिजर्ट्स, वेज ते नॉन वेज विच ढेर सारी वैरायटी
7: ते नाले जगीर दी स्पेशल चाय भी ट्राई करियो।
6: 1 सीडर ग्रोव रोड, मोनो, ऑरेंजविल दे विच।
7: कॉल 6474003229
6: और विजिट www.jagirdataba.ca।
1: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आना कानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने की सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800567HURT4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इन

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: आ कौन? आ बिना गल्लों नहीं अखा जिया चाड़ी फिर दे।

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारे किस्मत में ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: हम भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.
2: इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे फासले।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: दो कुड़ियां साडी गली च रहंदियां, एक पतली एक भारी। ओ भारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक पुल गई, के दाल में नमक पुल गई। जद खिच के ओ जद खिच के छड़े ने अख मारी।

माता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact. Showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी का मेला। कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो, अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाच।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance,
3: we also ship cars,
1: Kailer transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist.
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार, आ गया फेर तो एक बार, तुहाडा अपना CJMR 1320। CJMR 1320।
6: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
7: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
6: और विजिट www.calidonpaving.com।

0: फिर हुड़प लियो ना प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
1: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
0: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथों तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चां, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चां अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा। सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तों अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदण वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 905-799-0045 Top Choice Electronic
3: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਨੂਆ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ
4: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 6477936889
5: ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ
6: ਓ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ
7: ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ
5: ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਹਰੇਕ ਮਿਠਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ
7: ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਆਲ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲ ਐਟ 416-213-1165 416-213-1165 ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ
8: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
9: HK Movers,
8: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
9: For service with a smile, give us a call.
8: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
9: 416-524-6704.
8: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance, HK Movers.
10: HK Movers.
11: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दालां आटा देसी घिओ मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट
12: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
13: ओ यार काव्य होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
14: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
15: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
16: वाह भाभी जी मुबारकां तुहाडा घर ते बहुत शानदार है कारपेट्स वुडन सब कमाल दे ने लगदा है काफी खर्चा कीता है
17: ए कमाल है जी जीटीए फ्लोरिंग दा
18: अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान वड्डे शोरूम ते आओ हार्डवुड कारपेट लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ कॉल करो नव बराड़ नु 905-605-8405 905-605-6605
19: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा
20: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा
21: अगर तुहाड़े बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो तो एको एक नाम नु याद रखना पिछले 25 सालां तो कम्युनिटी दे विच मन्या परमन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565 25 साल दी दिंदे ने नाल वारंटी 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा लई पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा
22: ओ हेलो यार मेरा भी लोड लै जी ट्रक फेर खड़ गया यार
23: ओ भरावा हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
22: सच्ची
23: ओ मुच्ची
22: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
23: इना कोला सालां दा तजुर्बा
22: हुन एड्रेस भी लिखा
23: लै लिख ला वन गुड मार्क प्लेस इटोबी कोक यूनिट 5
22: कॉल 647-70 7056927 6477067
0: ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਡੀਲ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਸੇਲਸ ਡੀਲਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਓਨੈਸਟ ਸੇਲਸ ਡੀਲਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ
1: ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਦੋਨਾਂ ਚ ਦੇਣਗੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ, ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਾਲ ਕਰੋ 4163031515 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ arshchawla.com।
2: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साउथ को अपना साथी बनाओ।

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ. इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ. विजिट lovesouth.ca.
1: लव साउथ.
2: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार. योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार. आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320. CJMR 1320.
3: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो.
4: लिसनिंग टू CNN टोरंटो, चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे।
3: 6478886000।
2: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
3: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी,
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस समग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 719 एयरपोर्ट रोड माल्टन, इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714 29।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079।
14: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
15: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
14: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
16: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਤਾਮਿਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਸ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ, ਡਰਾਮੇ, ਨਿਊਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859, 6475545859।
17: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
18: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
19: CJMR 1320 AM frequency radio program, TV program Nagla Punjab. I'm your host and friend Anju Sikka. Pishe khidmat hai aapki nazar mein aaj ke mukh samachar. Sabse pehle aapka tapman, right now 19 degrees centigrade hai, partly cloudy. Kal ka highest 23 degrees rahega, lowest 13 aur cloudy day hoga. Khabar ki surkhiyan aap sabke khidmat mein. Prime Minister Carney ne hansi mein tali hai baat Trump ke advisor ki, jisne Canadian lobbyist ko kaha ki get the hell out of US. Aaiye kuch live update dete hain iska. Peter Navarro, जो कि काफी अरसे से एडवाइजर है फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनेडियन लॉबिस्ट को मंगलवार को यानी कि आज कहा कि गेट द हेल आउट ऑफ द यूएस और चेताया कनाडा को अगेंस्ट कि यूएस के मिड टर्म इलेक्शन में दखलअंदाजी कनाडा ना करे। लेकिन बाद में जब मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैंकूवर में प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने हंसी में इस बात को लिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया नेवारो की वार्निंग को लेकर। ट्रंप के एडवाइजर का कमेंट आया जब यूएस ने बैन किया कुछ कनेडियन इम्पोर्ट्स को जो कि प्रभावित हो गए मिडनाइट से, और पहले ही इस महीने के शुरुआत में ट्रंप ने साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिस्पांस टू कनाडा के रिटेलिएटरी टैरिफ जो कनाडा ने लगाए थे, कोलैप्स ऑफ ट्रेड टॉक्स जो कि अगस्त में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। बैन जो है इफेक्टिव हुआ कि इंडस्ट्रीज जिसमें अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट्स और मोटरसाइकिल्स है। व्हाइट हाउस ने जस्टिफाई किया अपने मेजर को इस महीने, कहा कि कनाडा ने रिस्ट्रिक्ट किए हैं अमेरिका के अल्कोहल, ऑटोज और डेयरी प्रोडक्ट्स और अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को डिसएडवांटेज में रखा है। की डिटेल्स जानते हैं। ट्रंप ने एडवाइजर ने कहा है कैनेडा लॉबीज़ को गेट द हेल आउट ऑफ हियर। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने इस बात को हंसी में उड़ाया। यूएस ने बैन किया है अमेरिकन यूएस $1 बिलियन की कनेडियन इम्पोर्ट जो कि कल से प्रभावित हुई है। ट्रंप एक्सपेक्ट करता है कि कनाडा आके बातचीत करेगा ट्रेड डील को लेकर। कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कॉट एटकिंसन ने रिजाइन कर दिया। एंड ऑफ द ईयर से वो रिजाइन कर देंगे। उन्होंने इस बात की इत्तला पियर पॉलिवो को पहले भी दी थी और कहा जा रहा है कि 8th मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिसने रेजिग्नेशन दिया है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। एक माँ है, उसकी वीडियो उसने वायरल की है अपने बच्चों के स्कूल में जो कि लंदन में एक स्कूल है। बुलिंग हो रही है, बुलिंग इस हद तक कि उसकी बेटी जो कि 10 साल की थी उसको कुछ बच्चे इकट्ठा मिलकर मार रहे हैं। उसका बेटा जो कि 11 वर्ष का है उसके बच्चे को भी कुछ यूथ वहां पर अटैक कर रहे हैं। ग्राफिक वीडियो है जिससे लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल से बहुत टूट चुकी हूं, एज अ मदर मैं बहुत ज्यादा घबराई भी हुई हूं। उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में प्रिंसिपल से सबसे बात की, उन्होंने स्कूल को बदलने की कोशिश भी की लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उस एरिया में नहीं रहती थी। बुलिंग को लेकर जो समस्या है स्कूल्स में अभी भी काफी उजागर है। सस्केचवान की एक कम्युनिटी है जो कि अभी भी मेथ जो कि वेस्ट वाटर होता है कनेडियन सिटी में, सबसे ज्यादा मेथ इसी सिटी की वेस्ट वाटर में पाई जा रही है जो कि अपने आप एक चिंता का विषय है। प्रिंस अल्बर्ट जो कि हाईएस्ट लेवल्स है ग्रेटर फ्लक्चुएशन बोथ मेटामेथफीन और कोकेन जो कि मेजर की गई है बाइट्स मेटाबोलाइट बेंजो लेकोगोनी और कलेक्शन पीरियड हुआ जिसमें कि वहां की जो सरकार है वो भी चिंतित नजर आती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने अनाउंस किया है 1.2 बिलियन का ओशंस के लिए और उम्मीद की जा रही है पाइपलाइन का डिसीजन आगे चल के सक्सेसफुल होगा। वैंकूवर में आज बातचीत करते हुए कार्नी ने कहा फंड जो है सेवरल नए मेजर्स के लिए होंगे जिसमें कि एक्सपेंशन हो रही है, बढ़ाई जा रही है कैनेडा की कोस्ट गार्ड कैपेसिटी। इसके साथ ही साथ एक मैनिटोबा में कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि जितने सांप वहां पर देखे जा रहे हैं इस बार कभी भी उतने नहीं देखे गए और ये काफी सांप है जो कि घातक है और वहां पर लोगों को काटते भी। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में कम से कम 30 सांप पकड़े हैं अपने आइस रिंग से। अमेरिका के इम्पोर्ट बैन नया प्रेशर डाल रहा है कनेडियन वाइन्स के ऊपर, अल्कोहल प्रोड्यूसर्स के ऊपर जिसमें खुद भी चिंतित है। मिसागा में आज एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है करीब करीब 6 बजे शाम को विंस्टन चर्चिल डंडास के बाद जिसमें एक पेडेस्ट्रियन व्यक्ति की गाड़ी की स्ट्राइक होने की वजह से मौत हो गई है। दूसरे एक पेडेस्ट्रियन की मौत हो गई, सीमेंट ट्रक रोलर हुआ हाईवे 401 स्कार्बरो के अंदर और साथ ही साथ दो व्यक्ति को चार्ज किया गया विद फर्स्ट डिग्री मर्डर वॉन में जब डेडली शूटिंग हुई थी 2025 में। यह था खबरों का बुलेटिन आप सबकी खिदमत में। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजू सिक्का।
17: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320.
20: ਖਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਕੰਗ 680 ਰੈਕਸਟਲ ਬੁਲੇਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕੇਟਿੰਗ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100, 200, 400, 500 ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 680 ਰੈਕਸਟਲ ਬੁਲੇਵਾਰ ਹਾਈਵੇ 27 ਤੇ ਅਲਾਕਾਟ ਮੈਨਿਊ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਨ ਸੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੰਗ 416-679-9999 ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਖਰੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ 1133 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੋਰ ਰੋਡ ਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੌਂਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ 416-433-9999 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
19: ਔਰ ਨਨੂ ਐਂਡ ਯੂਫੀ ਲੋਇਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਫੈਮਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਾਅ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਨਨੂ ਐਂਡ ਯੂਫੀ ਲੋਇਰਸ, ਨੰਬਰ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੈਮ 647-793-6889।
20: ਓਰਿਜਨਲੀ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ 1641 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ 6141 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 42 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 9059288557-905-9285-5857। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ, ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਚੌਖੀ ਤੇ ਆਨ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਜੀ 416-561-8882 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
19: ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿਮਨੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਟੀਓ ਸਟੈਪਸ, ਵਾਕਵੇਜ਼, ਫੈਂਸ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ, ਪੂਲਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਓਰੇਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਂਡਿਡ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦੇ ਟੀਮ ਫਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਨੰਬਰ 416-474-6836।
20: ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਏ ਟਾਪ ਚੋਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ